ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि। तदनुसार 18 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7 बजकर 2 मिनट से लेकर 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, 9 बजकर 2 मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10 बजकर 2 मिनट पर सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मंगल ब

0: हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन

0: प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे।

0: भारत की चार दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
6: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही 75 स्टेशन्स का लोकार्पण किया गया है जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है
5: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat railway stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
7: Union Home Minister Amit Shah arrived at Baghdogra last night on a three-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a Prohari Shambhalan. He is also scheduled to hold a series of meetings at Uttarakhand on issues concerning the border areas of North Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari and senior state government officials are likely to attend the meetings. Mr. Shah will travel to Kolkata this evening. Tomorrow, the Union Home Minister will review the law and order situation in the state at a meeting with senior Polish officials. He is also scheduled to attend a function at National Library and participate in the foundation stone laying ceremony of the Amul Dairy Plant at Dhulagarh from the Bishwa Bangla Convention Centre. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion, and boost industrial and economic growth in the Pune region. The projects will be implemented under the design, finance, build, operate and transfer model, with a 29-year concession period, and are scheduled for completion within 4 years. Skyroot Aerospace is set to undertake the maiden orbital launch of Vikram-1, India's first privately developed launch vehicle.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: WFM ट्रैकोबैन
7: 103 MHz,
6: न्यूज म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट।
7: FM
6: 103 MHz।
8: जी हाँ, अपना कनहुनिया से आकाशवाणी FM ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज उन्हें रंगा सब बिल्ला क्या को स्वागत करें से हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम जून टू असे आरजेस चॉइस दैट इज मुइला का पसंद गाना। जी हाँ, मुइला का प्लेलिस्ट है, मुइला का किसुमान पसंदीदा गीत खान लाइन अप करेगी ना से और जी मन भी इटे लोगे प्ले करे से अपना खान होनी की ना एंजॉय करे से कोई की ना भावना करे से। तो अमी खान ना प्रोग्राम आगे लुई जाए से दूसरा गीत आको ना बजाओ गोटे अपना खान ना किसुमान मैसेजेस खान लुई दिया से आज फुजिर टुएन सांग पर आएगी ना प्रोग्राम ते शामिल हुई ना से अखों और तार पर गुड मॉर्निंग विश लगते लिखे से। ओके, ट्वेंसांग ते पानी बिसी गिरे से होली भी FM ट्रैक अपन लगा प्रोग्राम लोते जुड़ी गिना अपना लगा प्लेलिस्ट तो बिसी भाल लगी गिना हुनिया से कोई गिना लिखी गिना पढ़ाई से अखों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू आज फुजिर डे अपना प्रोग्राम दे आई गिना शामिल हुई से बिसी खुशी से मई गलती न होले माने अपना लगा मैसेज मई लगा शो टाइम टा आज फर्स्ट टाइम पूरी ना बेसी खुशी कर आपनर के प्रोग्राम टे स्वागत कर सब बिल्कुल आम खान लोटे लिखी किना पठाई आसे। ओके, दिस इज फ्रॉम सूर रेडियो लिसनर्स ग्रुप और तार खान पर भी FM ट्रैकपनला फैमिली सबके गुड मॉर्निंग विश लिखी किना पठाई आसे। सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप खान पर भी गुड मॉर्निंग विश लिखी गिना पठाई आसे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप और सूर रेडियो लिसनर्स ग्रुप खान आज फुजिर आको वापस आई ना प्रोग्राम लोटे जुड़ी गिना लिखी गिना पठाने मिले खुशी जनाई दी आसे। लाखुटी प्रा टीम प्रा भी गुड मॉर्निंग विश कर आसे और तार को आसे योर सेलेक्टेड सॉन्ग्स आर गुड थैंक यू कोई गिना एक्नॉलेज कोई गिना लिखी गिना पठाई आसे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू टीम आज फुजिर टीवी आको वापस आई गिना प्रोग्राम।

एचु आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज होने तक सब बिला की त्या समय जानी दिए से कोहिमा टाउन बिटर लगा रेल टाइम टे ट्रैफिक अपडेट इनका से आज फुजिर लगा रेल टाइम टे ट्रैफिक अपडेट मोहन खोलापुर लुगिना पीएचक्यू जंक्शन मजद लगा रास्ता नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दुईटा फिले भी आहा लगा भी जुआ लगा भी हल्का हल्का ट्रैफिक दिखाई दिए से पीएचक्यू जंक्शन पर लुगिना मेजर जंक्शन मजद लगा रास्ता भी नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड हल्का ट्रैफिक दिखाई से डीसीपी पर लुगिना राजू पॉइंट मजद लगा रास्ता नॉर्थ बाउंड टू हिले मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई से माने ट्रैफिक तो आसे किंतु इमान भारी भी नहय इमान हल्का भी नहय मजते आसे किंतु साउथ बाउंड टू हिले हल्का ट्रैफिक दिखाई आसे राजू पॉइंट पर लुगिना सेंसस पॉइंट हाई स्कूल जंक्शन पर लुगिना सेंसस पॉइंट और एनएचएके जंक्शन पर लुगिना सेंसस पॉइंट मजद लगा रास्ता दे नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड माने जुआ लगा भी और आहा लगा भी हल्का हल्का ट्रैफिक दिखाई से कोहिमा टाउन भर ट्रैफिक तो इमान भारी नहय होले भी अपना खान जीतिया गाड़ी चलाई आसे हुशियारी लगते और ट्रैफिक लगा नियम खान चलना गाड़ी चलाबले कारणे जानकारी दी आसे और अपना खाना जानकारी निमित्ते कह दी आसे नॉर्थ कोहिमा कैसे कहले नागालैंड सिविल सेक्रेटेरियेट फिले जा लगा रास्ता के नॉर्थ कोहिमा कै और साउथ कोहिमा कैसे कहले पियर हिल फिले आहियाला रास्ता के साउथ कोहिमा कै एटू थाकिसे रियल टाइम टे ट्रैफिक अपडेट शुनि थका सबबिलाक प्रोग्राम लते जुड़ी थाकिबि आको भी आनी दिया हब रियल टाइम टे ट्रैफिक अपडेट।

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड
1: गुड मॉर्निंग
0: मॉर्निंग तनुश्री।
1: मैम। मैं ग्राम गुनोरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र से तनुश्री सर बात कर रही हूँ।
0: जी महाराष्ट्र से बोले, कैसे हैं?
1: जी मैम, मैं बहुत बढ़िया। और बहुत दिनों के बाद मेरा फोन लगा है, तो ये बहुत ज्यादा मैं नाराज तो नहीं हूँ, क्योंकि इतना तो वक्त चाहिए, क्योंकि ये दूसरे भी श्रोता आज होते तो हमें भी अच्छा लगेगा।
0: जी सब लोग भी चांस मिलने के लिए बहुत लगातार कॉल लगाता है, इसीलिए आप लोग
1: जी
0: भी, जब तक आप लोग का कॉल नहीं लगेगा
1: जी मैम, मेरा
0: तब तक कॉल लगाना पड़ेगा। हाँ
1: पिछले शनिवार से मेरा कॉल नहीं लगा, आज लगा है मेरा।
0: हाँ बोले तो आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: फिल्म का नाम है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया
0: चक
1: इंडिया
0: दे देखता है कि नहीं। चक दे चक दे चक दे चक दे इंडिया नहीं है, इसलिए अगर आपको दूसरा गीत सुनना है तो बोल दीजिए।
1: जुगनू।
0: जुगनू,
1: हाँ
0: जुगनू भी इतना श्योर नहीं है मुझे। ओके, जुगनू कौन सा ओला, पुराना है या नया ओला?
1: हाँ पुराना
0: पुराना में कौन सा ओला?
1: गिर गया, झुमका गिरने दो।
0: गिर गई, झुमका गिरने दो। शायद आपने गलत गीत का बोल बोल दिया है ना क्या?
1: नहीं मैम, यही बोले गीत की।
0: जुगनू पुरानी वाला में आज की रात है, देश की पूर है, हमें तो शाम एक गम है, लूट जवानी फिर तुम भी भुला दो, उमंगे दिल की वो अपनी याद दिलाने यहाँ बतला वफा, ये है पुरानी में।
1: वैसे मैं आपकी पसंद का इसमें कोई भी सुना दीजिए, क्या गाना सुनने का हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बात करने में हम कॉल करते हैं। हाँ तो
0: आपने कॉल
1: इसलिए
0: किया है,
1: आप,
0: आपका पसंदीदा गीत होना चाहिए ना, तो एक फिल्म का
1: अरे
0: नाम बोल
1: बस
0: दीजिए।
1: एक फिल्म आपके पास है, साजन।
0: साजन तो है, साजन में कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: वो देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार देखा है पहली बार।
0: ओके, और किसी का नाम लेना है आपको?
1: हाँ पहले तो आप हैं, फिर मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान सिंह परमा जी है, राकेश जी, शिमला से गंगाधर सावनकर जी, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सचरिया जी है। और मैम प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये गाना आधा बजा दीजिए, क्योंकि गाने हमने सुने होते हैं और कॉलर ज्यादा जुड़ नहीं पाते, तो मेरा गाना आधा बजा दीजिए।
0: ओके ठीक है, तनुश्री आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल के लिए शुक्रिया,
1: बाय।
0: बाय बाय। उन्हें ढगा सब बिना खुनी वो साजन फिल्म की गीत गाए से एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक लगा वास्ते और इटू गीत टू আমি খান লোটে কল করে কিনা পছন্দ করেছে মহারাষ্ট্র পর তনুশ্রী আর তারপর তার লাগা পাপা আর এফ এম ট্রাকপন দ্বারা যিমানজন বি তার দোষ বানাই কিনা আছে তার খান কি বি নাম লই কিনা ডেডিকেট করে দিছে, তো শুনিব সাজন ফিল্ম কি গীত।

0: का शुभ नाम?
1: दीदी मेरा नाम है ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओके भगवान सिंह जी बोले, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आप एक नंबर प्रस्तुत कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम दीदी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: बोले कौन सा गीत सुनना है आप आज
1: जी
0: आपको?
1: दीदी मुझे आज सुनना है जाने दुश्मन फिल्म का।
0: हाँ
1: जानी दुश्मन है फिल्म का नाम दीदी,
0: जाने
1: मूवी का नाम।
0: दुश्मन, अगर ये नहीं है तो कुछ और मन में है?
1: जी हाँ दीदी, बहुत सारी फिल्में हैं,
0: बोले
1: आप तो जो भी सुनाना चाहें। आप इस बार फिल्म का मिल जाएगा इस बार?
0: ये नहीं है इसलिए
1: तो
0: पूछ
1: दीदी
0: रहा।
1: किसे प्यार करूं फिल्म है?
0: हाँ
1: किसे प्यार करूं?
0: किस किस से?
1: हाँ जब दीदी आप है ना, ये मिल जाएगा आपके पास, एक फूल दो माली का।
0: एक फूल दो मालिक शायद हो सकता है, दिखता हो एक फूल,
1: मिल जाएगा दीदी ये आपके
0: एक
1: पास।
0: फूल दो मालिक। ओके एक फूल दो माली है, बोले कौन
1: दीदी
0: सा वाला
1: इसमें
0: गीत
1: गीत
0: है?
1: है ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं।
0: ओके मोहम्मद रफी और आशा भोसले का आवाज में
1: जी
0: है।
1: हाँ दीदी
0: ओके
1: बिल्कुल दीदी,
0: और
1: और कुछ
0: किसी
1: दोस्तों का नाम
0: किसी
1: लेना
0: या
1: चाहूंगा दीदी।
0: किसी का नाम लेना
1: जी
0: पसंद
1: हाँ दीदी,
0: करेंगे?
1: पहले तो आपका नाम, आप शामिल रहेंगी गीत में दीदी।
0: ओके थैंक यू।
1: वो गजराज लोधी जी हैं, सेवा लोहट जी, तनुश्री बिटिया महाराष्ट्र से, अंजलि भस्मतारी, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश पात्रे जी, भाईकन मुंडा जी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगेलाल चंदेल जी, सावनकर गंगाधर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा जो लाइव सुन रहे हैं कोई आकाशवाणी।
0: ठीक है भगवान सिंह जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।
0: হুনি লগা সব্য লগ শুনিব মোহাম্মদ রাফি আর আশা ভোসলে লগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে এক ফুল দো মালি। আর এইটু গীতটু পসন্দ করি কিনা কল করেছে মধ্যপ্রদেশ পরা ভগবান সিং পরমার, আর তারপরা এফ এম ট্রাকুপন লগা থ্রু পরা কিছু সাথী বিল বানাই লই কিনা আছে, আর তারখানা নাম লই কিনা ডেডিকেট করে আছে, আর কহিমাপরা যিমান জনবি শুনি আছে তারখান সব কিবি ডেডিকেট করে দি কিনে আছে, একসাথ শুনব আর এনজয় করা হব এক ফুল দো মালি ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमेल बुगला।
0: ओके, बोलिए कैसे हैं।
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: वो फिल्म का नाम है मैडम कुसूर।
0: कुसूर।
1: हाँ जी,
0: अगर ये नहीं है तो आप मन में दूसरा गीत है।
1: फिल्म का नाम रहेगा फिर रंग।
0: रंग
1: हाँ जी,
0: रंग रंग कौन सा वाला है, कौन सा साल का है?
1: ये नई वाली है, उसमें आवाज है
0: 212 का
1: कुमार
0: है, 2012 का है।
1: साहब की। नहीं, पुरानी वाली चाहिए मैडम मेरे को, 2003 दो तीन के आसपास की हो।
0: अभिजीत का आवाज में है, उदित नारायण का आवाज में है, सोनू का आवाज में है, अलका का आवाज में है ये रंग। गीत का
1: हाँ,
0: बोल बोल दीजिए।
1: इसमें

0: गीत के बोले शाबान नखरा लड़की का, वाह वाह ये गाना है। नखरा लड़की का,
1: नखरा लड़की तो नहीं है।
0: चलो आप बताओ इसमें कौन कौन से गाने में जो
1: ये मेरी दुआ में असर आई आई हो अभी, ये तो मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं, खुदा की कसम है हम थे तुम थे, हवा ने ये पैगाम, इश्क ने इश्क ना मांगे।
0: चलो फिर मैडम इसमें नहीं, फिर मैं दूसरा सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा राजा बाबू।
1: राजा बाबू, राजा बाबू में कौन सा वाला गीत सुनना है? राजा बाबू शायद मेरे पास नहीं है।
0: मैडम आपका तो पूरा कंप्यूटर खाली पड़ा है।
1: हाँ इतना तो नहीं है।
0: तो फिर फिल्म का नाम है राजा बाबू नहीं है तो राजा भैया?
1: राजा भैया भी नहीं हो इतना श्योर नहीं है, नहीं है, नहीं है।
0: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा बेवफा।
1: बेवफा तो है,
0: देखो बताओ आप इसमें कौन कौन से गाने, मैडम गाने लाओ इसमें।
1: बेवफा में, बेवफा ओके, बेवफा नहीं, बेवफाई है।
0: बेवफाई में कौन कौन से गाने
1: हैं
0: बताओ?
1: सिर्फ दो ही है, एक नजर है और शुक्रिया दिल है।
0: हाँ ये चलेगा, शुक्रिया शुक्रिया दर्द दीजिए तुमने दिया।
1: ओके और किसी का नाम लेना है तो जल्दी से ले लो।
0: जी नाम भी लूंगा, बहुत खुशी हो रही कि अंत में ये गाना मिल गया। मैडम आपके थोड़ा गाने लाओ मैडम, इसमें हमें श्रोताओं को परेशानी होती है, थोड़े गाने लाओ और भी।
1: हाँ सस्ता तो चल रही है
0: जी। तो सबसे पहले तो आप है और मेरा दोस्त राकेश है, भगवान सिंह जी है, अविनाश जी है, रमेश पात्र है, विमल है, अमल है, गोल्डी भाई है और रमेश पात्र जी है और जितने भी कॉलर जिसका भी नाम मैं लेना भूल गया, उन श्रोताओं के लिए लाइव जहां तक पूरा नॉर्मा की बात पहुंच रही उन श्रोताओं तक।
1: ओके ठीक है, थैंक यू,
0: थैंक यू मैडम, धन्यवाद,
1: वेलकम। उन्हीं तक सब मिला खुनीबो बेवफाई फिल्म के गेट गए से किशोर कुमार लगा आवाज से और टू गेट टू पसंद करे राजस्थान प्रा पुरान वर्मा और तार प्रा FM ট্রাগোপেন লা তার লাগা দোস কিছুমান খান আর ইটালুগে যেমান জন লাগা কল লাগি কিনা আছে তার খান সব কিবি ডেডিকেট করে দি কিনা মাং করেছে। তো সুদিব বেবাফাই ফিল্ম কি গীত

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार बोलिए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी
1: जी
0: बोले कैसे हो?
1: बढ़िया है, आप सुनाओ आप कैसे हो? हमारे तो बादल छा रहे हैं, बरसात का मानसून आ गया है शिमला में।
0: मैं तो सुबह से अंदर में ही हूँ, कैसे वो तो पता नहीं है। बाहर निकलने के लिए समय नहीं मिला है। हो सकता है बारिश भी और बादल भी छा गया होगा, पता नहीं है। फिर भी बोलिए, कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
1: फिल्म का नाम है मधुहोशी।
0: मधुहोशी
1: हो, ये मिल जाएगा आपके पास, कई बार सुना मैंने।
0: हाँ मधुहोशी है, कौन सा वाला गीत सुनना?
1: एक गाना है ओ जाने जाना।
0: ओ जाने जाना, ओके। और किसी का नाम लेने के लिए पसंद करेंगे आप?
1: सबसे पहले तो आपको गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू।
1: तो महाराष्ट्र है, तनुश्री जुड़ी है, उनका कॉल लग चुका है, तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके ठीक है।
1: तो पूरन वर्मा है, भगवान सिंह परमार हैं, और अमल और विमल भस्माचार्य हैं, रुकुमिला मिठा हैं, और गजरात लोधी हैं, और गजरात लोधी की बात है, और तमाम सुनने वाले श्रोता हैं जिनका भी नाम छुटिया है, उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके ठीक है राकेश जी, आपने कॉल किया और आपका कॉल भी लग गया है आज, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए आपने जिस गीत को सुनने के लिए पसंद किया है। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: ओके ओके बाय
0: बाय। उन्हें रगसा बिलक होनी बो मधोशी फिल्म के गीत गए से उदित नारायण और सदना सरगम और यू गीत तो शुनी बोले मन हुई कि ना आम खालते कल कर ऑल द वे फ्रम शिमला राकेश जी और तार एफ एम ट्रैकपन लगा किसान साथी बिल्कुल खान के डेडिकेट कर मधोशी फिल्म की गीत।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने भरी अपनी पहली परीक्षण उड़ान। इसे हैदराबाद की कंपनी स्कायरूट एरोस्पेस ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फोर्सेज फर्स्ट कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सर गैरफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी सेवाएं व्यक्त की हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मैजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में माओगंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तस्कना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता व्यक्त की। PV सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफई को हराया था। फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। तो ये थे आकाशवाणी पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो है, नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक्श हो जाते हैं आपके दिलो जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, जहाँ 9868107070 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह है आपके दिल के करीब, जिससे जुड़ी कोई याद, कोई बात, या फिर उसकी बीट्स, या फिर उससे यू नो बस कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी वाइब आपको पसंद है, रीजन बताएंगे तो अच्छा लगेगा दोस्त। जी हाँ, और 2000 ईयर के बाद के गाने हो, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने ना हो, क्या करें, यही प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, गुड आफ्टरनून।

व्हाट अ मास्टरपीस. सीरियसली, ये सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है बल्कि एक ऐसा सफर है जो धीरे धीरे स्पिरिचुअल ट्रांस का एहसास कराता है. आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है यस मेरा वाला सॉन्ग. मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ. कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिखती हैं कि फिल्म रामलीला का ढोल बाजे नगाड़े संग ढोल बाजे सुनना है. तो बिल्कुल जी, आपने हमें ठीक एक बजे और एक बज के एक मिनट पे दो ये मैसेज कर दिए, तो क्यों नहीं, मैंने ये गाना क्यों कर दिया है. और वैसे भी और नेक्स्ट जो मैसेज आया है राहत और गजाला का मैसेज आया है, ये HMF स्कूल बिजनौर UP से लिखते हैं. दिल आशीना है ओके, मूवी से कोई भी गाना सुना दीजिए. मूवी के गाने तो बड़े अच्छे हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हैं. इस मूवी के सॉन्ग्स हमें बहुत पसंद है ओके. और फिर इसके साथ राहत गजाला के बाद हमें जैद और हुदा का गाजियाबाद से मैसेज आया, सिर्फ तुमका पहली पहली बार मोहब्बत की है. क्या बात है, सच में की है या ऐसी सुनने का मन है. कान से मोहम्मद फुरकान जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है. अंदाज मूवी का अंदाज से जो देखने okay, आपने गाने हमें लिखे हैं ओके, सॉन्ग सुनवा दीजिए ओके. ठीक है, कोशिश की जाएगी मोहम्मद फुरकान जी. और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके, सुखलाल बारा हमें वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, अंदाज मूवी का आएगा मजा बरसात का ये गाना सुना दीजिए ओके. कोशिश की जाएगी. और इसी के साथ आपने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे, इसलिए प्रियंका चोपड़ा का कोई भी गाना सुनवा दीजिए. जी बिल्कुल, प्रियंका चोपड़ा का हम कोई भी गाना सुनवा देंगे. और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके, राम राम जी, स्वागतम प्रियंका जी, हेलो एंड नमस्ते इंडिया. जितना करो लगता कम ही है, जितना बांटो लगता कम ही है, जितना किसी से स्वीकार कर लो लगता कम ही है. नाम अधूरा है लेकिन इसके बिना जिंदगी अधूरी सी, क्या करे प्रियंका जी. रेनबो का प्यार ही इतना है सबसे, जो जितना करे कम है. आप जैसे नायक कीमती रत्न हैं जो रेनबो के पास. जब भी आते हैं दिन बना जाते हैं, देशभक्ति जगा जाते हैं, आध्यात्मिक ओरा बना जाते हैं. शशत नमन है आपकी सोच और आपके विचार को. मेरा रंग दे बसंती चोला, रोहित खेरा दिल्ली 9 से लिखते हैं. बहुत ही प्यारा लिखते हैं आप, कि क्या करे, मतलब दिल खुश कर देते हैं आप. इसी के साथ बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए. और अब जो हम ट्रैक सुन रहे हैं, जी हाँ, वो हमें देवभूमि से जो मैसेज आया था कविता का, उन्होंने कहा था कि हमें नगाड़ा सुनना है संग ढोल बाजे. वैसे ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक के बारे में आराम से बात करेंगे, पहले इस ट्रैक को सुनते हैं ठीक है.

माय माय, इस सॉन्ग में गुजरात की संस्कृति, वाइब्रेंट कलर्स और बॉलीवुड के सिनेमैटिक स्पेक्टिकल के शानदार संगम को देखा जा सकता है। सीरियसली ये ट्रैक आपने देखा, ये गाना सिर्फ डांस नंबर नहीं है गाइस, सेलिब्रेट करता है पैशन और ट्रेडिशनल एनर्जी का एक विजुअल ट्रीट है और दीपिका की ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस। ओ माय माय, इसी के साथ नेक्स्ट ट्रैक है गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। मैं रमेश वर्मा विश्वकर्मा ग्राम मेहंदीगंज मंडई पोस्ट राजा तालाब जिला वाराणसी से हूँ। आज के मेरे वाला सॉन्ग कार्यक्रम में डीडीएलजे के गीत सुनना है। गीत के बोल हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कुमार सानू, लता मंगेशकर, गीत आनंद बख्शी, संगीत जतिन ललित वश। ओके 1995 प्लीज मैम ये गीत चला दीजिए। ओके चलिए ये गीत सुनते हैं, क्योंकि ये जो गाना है ना, इस गाने में मेलोडी, इमोशन और सिनेमैटिक रोमांस का एक सुंदर संगम है जो हर जनरेशन के दिल को छू जाता है। आज भी ये गाना लगाएंगे ना तो आज की जेन जी है वो भी इस गाने से अट्रैक्ट होती है। सो हियर वी गो।

0: join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: प्रणव शिंदे मुंबई से हमें लिखते हैं, क्या मैसेज लिखा है इन्होंने हमारी तारीफ में। ला ला ला, प्रियंका जी आपकी आवाज में वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है। जब आप बोलती हैं तो एफएम रेनबो पर तो दिल्ली का हर लम्हा मुस्कुराता है। हवाओं में बिखरती है जब आपकी आवाज की ये सुरीली तान। प्रियंका जी आपकी सादगी और अंदाज पर फिदा है सारा जहां। कानों में रस खोलती है आपकी ये प्यारी सी आवाज। थकी हारी दिल्ली को पल भर में दे जाती है गहरा सुकून और नया सांस। क्या बात है, आपकी ये चॉइस जो है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ये प्ले हो रहा है फ्रॉम द फिल्म यस बॉस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज।

जी हाँ, वैसे तो गाने कहते ना कि अगर तुम जो कहो वही बात सुनेंगे, तुम जो कहो वही बात सुनेंगे, इसको कोई पूरा कर सकता है? जी हाँ, मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे, हालांकि मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन तुम जो कहो वही बात सुनेंगे, इस लाइन को कोई कंप्लीट कर सकता है तो करिए। 9868107070। जी हाँ, ऐसी मन करा क्या, चलिए आपके साथ कुछ तुकबंदी हम खेलते हैं, और इसी के साथ म्यूजिकल तुकबंदी, ठीक है? इस गाने को अगर हम कंप्लीट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मेरा मैसेज आया कि मेरा नाम अनुज राठी है, मैं मेरठ से, एक गाना हमारी पसंद का चलाएं अपनी दोस्त के बर्थडे के लिए, फिल्म फर्स्ट से। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। ये गाना कितना पुराना है लेकिन फिर भी कितना प्यारा है ना। जी हाँ, दिल से विश करता है कि बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए कि तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके दोस्त का नाम क्या है दोस्त, ये तो बता देते अच्छा लगता। इसी के साथ हमें प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें नमस्कार जी, जब कोई बात बिगड़ जाए गाना सुनवा दीजिए, फिल्म जुम का है ये, कुमार शानू साधना सरगम ने गाया है ये गाना। ओके, सकारात्मक संदेश भी देता है, शुक्रिया दोस्त। रवि जोशी मेरठ से हमें लिखते हैं। इसी के साथ हमें मैसेज आया है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश, मुकेश कश्यप, शीतल।

सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल कर लिया है। जी एस गिल का पटियाला से है, दर्दे डिस्को फ्रॉम ओम शांति ओम, इसी के साथ ओके ये हमें मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून प्रियंका, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लवली ट्रैक, डीडीएलजे का बहुत प्यारा ट्रैक है। जी बिल्कुल, मुझे ही बहुत प्यारा लगता है, देखिए एवरग्रीन ट्रैक है, कुछ गाने जो होते हैं वो क्लासिक होते हैं। इसी के साथ गुड आफ्टरनून आनंद वालों से क्या नाराज की है, इस बारिश के मौसम में रिमझिम सावन, किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना दीजिए, किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें लिखते हैं। राजकुमार के संतानी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर लीजिए, बिल्कुल जी शामिल कर लिया है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, आपका वेलकम है, थैंक यू सो मच। आपने जब भी मेट से फिल्म गाने की जो रिक्वेस्ट की है, प्रदीप सलूजा, संगीत सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से हमें लिखते हैं, ओके थैंक यू सो मच। ये हमें रीना मीना का मैसेज आया है, ओके ये हमें चंडीगढ़ से आया, कहा है कि चंडीगढ़ करे आशिकी का ट्रैक सुना दीजिए, ओके और आपने कोई भी ट्रैक नहीं लिखा है दोस्त, तो रीना और मीना बहुत ही प्यारा यू नो है। चलिए और इसका चंडीगढ़ करे आशिकी का मैं ट्रैक मैंने क्यों कर दिया है, माफी, आई होप ये गाना पसंद करेंगे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

वेल दोस्तों, में बहुत सारी चॉइसेस आई हैं कि उन्हें प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है तो उन्हें प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का गाना सुनना है। तो बिल्कुल बर्फी में जो प्रियंका चोपड़ा ने झिलमिल चैटर्जी का जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, सीरियसली मतलब उन्होंने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग न्यूएंसेस से इस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया स्क्रीन पर। तो क्यों ना इस मूवी का हम गाना सुने आशियाना, बहुत ही प्यारा ट्रैक है।

वैसे अगर ये आपने मूवी देखी है ना, तो सीरियसली ये जो मूवी है, इस खासकर इस गाने की बात करूँ ना, तो इसमें झिलमिल चैटर्जी का जो किरदार प्रियंका ने बड़ी मासूमियत के साथ निभाया स्क्रीन पर, मतलब बिना ज़्यादा शब्द हैं उस उनके कैरेक्टर में, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से वो कैरेक्टर जो है वो बयां करती हैं अपना, कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनके एक्सप्रेशन के सरल एक्सप्रेशन हैं। आकाशवाणी रीन पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। वैसे गाइस, साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुँचती है और म्यूजिक सुनाई देता है। तो क्यों ना अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाएं अपने कानों तक। इसी के साथ हमें मैसेज आया फिल्म भूल भुलैया का, मेरे डोलना मेरे सुन। ओके, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ये गाना मैंने क्यों कर दिया है। और इसी के साथ, हेलो मैम, आई एम गुलाब सिंह फ्रॉम सहारनपुर, मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये गाना, दिल दिया गलना। ओके, टाइगर जिंदा है मूवी का, मेरी वाइफ पुष्पा कोहली, माई डॉटर अनन्या सिंह, कोहली का नाम भी शामिल कर लीजिए। बिल्कुल कर लिया जी। और इसी के साथ प्रियंका जी, तुम जो ना भी कहो फिर भी हम समझ लेते, दिल से दिल तक का साथ रहेंगे। आपको याद रहा वो लाइन? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को तो लगा कि मैंने वो लाइन बोली है, उसे कंप्लीट किया जाए। तुम जो ना भी कहो फिर भी समझ लेते हैं, दिल से दिल तक का साथ रहेगा, ओहो जब तक। रवि जोशी मेरठ से हमें लिखते हैं, क्या बात है। इसी के साथ, नमस्ते दीदी। ओके, राजेश खन्ना की पुण्य तिथि पर प्लीज अनुरोध, फिल्म का गीत सुना दीजिए, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से, जी बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ मैसेज आया है, फिल्म राज का और तेरे नाम का हमें ट्रैक सुनना है, सोनी गुप्ता नागलोई से हमें लिखती हैं। ओके, और इसी के साथ, हेलो गुड आफ्टरनून, ओके प्लीज मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। ओके सॉरी, मैं अपना नाम लिखना भूल गए, लवली। कोई बात नहीं, दोबारा लिख दीजिए। इसी के साथ, गुड आफ्टरनून मैम, मैं रिंकू कुमार। ओके, आपने हमें बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखा है और आपने दो चार गाने लिखे हैं। ओके, इसी के साथ हमें रायपुर से मैसेज आया है कुलभूषण जी का, और इसी के साथ, बर्फी मूवी देखी नहीं, अब देखने का ट्राई करूंगी। ओके, ये बिल्कुल ये मूवी जरूर देखना। ओके, आपकी आवाज़ में जो मीठी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे, थैंक यू सो मच। डॉली हमें लिखती हैं दिल्ली से, गुड आफ्टरनून विजेंद्र कोला घटोल। ओके, इसी के साथ सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, प्रियंका जी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी सैटरडे गुड आफ्टरनून। ओके, आपने हमें मिस्टर आशिक का गाना लिखा है, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। और कासगंज से राधे श्याम, ओके प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। ओके, धीरे धीरे नजर, ये कौन सी फिल्म का गाना है जरा मुझे बताइएगा। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके क्या करें क्या करें क्या करें, मैसेज आ रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। ओके, राम राम जी, राम राम जी। और ये मैसेज आया है, ओके रोहित खेरा जी का मैसेज है, और ये कहते हैं, कलयुग में अवतार हो आप। ओहो क्या बात है, कलयुग में अवतार हो आप, दिल से सबके जिससे जुड़ गए वो तार हो आप, रोशन हो जाए सारा जहां, ऐसे स्टार हो आप, वर्मा जी कुछ भी कहो सुपरस्टार हो आप, निरंतर आते रहा कीजिए, भाई के प्यार और आशीर्वाद के साथ अपना साथ बनाए रखिए, यूं ही हम सबको अपनी सुदबुद्ध से वाकिफ कराते रहिएगा, मेरे रंग दे बसंती चोला। थैंक यू सो मच। मेरे पास ना कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, पता है आपके मैसेज का जवाब देने में कितना अच्छा लिखते हैं कि क्या कहें, दिन बना देते हैं। और इसी के साथ, डियर प्रियंका जी, सो स्वीट लवली वॉइस। ओके, ये मिसेस धर्म भाटिया ने हमें लिखा है, ये हमारी बहुत तारीफ की है, थैंक यू सो मच। चौसी के साथ, हेलो मेरा वाला सॉन्ग थ्री इडियट का, बहती हवा सा, विकास पाठक हमें लिखते हैं। ओके, इसी के साथ मैं बहती हवा सा क्यों कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैंने कहा था मेरे डोलना हमें मैसेज आया था, तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।

वैसे ये जो एक सिंपल राग नहीं बल्कि प्योर क्लासिकल एक्सपीरियंस है. हिंदुस्तानी क्लासिकल रागों का इन्फ्लुएंस क्लियरली देखा जा सकता है, सुना जा सकता है इस ट्रैक में. इसी के साथ नमस्ते प्रियंका वर्मा जी, मैं नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपड़ जिला उत्तर गोवा से एफएम रेनबो का रेगुलर लिसनर हूँ. मुझे रेडियो सुनने की लत लग गई है. ओके, आप गोवा में हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, कल तेज हो रही थी. आपने मोहरा फिल्म का जो है सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है. नमस्ते मैडम, मैं कांता खंडेलवाल उज्जैन से मध्य प्रदेश. आपका आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं. आपकी आवाज़, आपके बोलने का तरीका हमें बहुत पसंद है. अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो. हम आपने हमारा गाना नहीं सुनाया, कोई बात नहीं, गाने बदल लेते हैं.

0: पड़ी है मार।
1: पता का चाय गजब का स्वाद।
2: दोस्तों भी मैसेज आया है, राम राम जी, बहुत दिन से मेरा मैसेज शामिल नहीं किया गया है। लोग बहुत ध्यान से गाने सुनते हैं, विमल माथुर, मनोज कुमार राठौड़, शिव शंकर, अर्जुन राठौड़, प्लीज मैसेज को शामिल कर लीजिए, कोई भी गाना चलाएं, बहुत अच्छा, सब अच्छे लग रहे हैं। रघुबीर नगर दिल्ली से राम किशोर, ठेकेदार नाम लिखना भूल गए थे। ओके।

गा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ ना हमेशा, मजाक मजाक में ही कहती हूँ कि गाना आए या ना आए गाना चाहिए जी, अब मेरे वाला सॉन्ग चाहे कैसा भी हो क्योंकि गाने सिर्फ सुर और ताल का खेल नहीं होता बल्कि दिल की आवाज़ होता है। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो पाते हैं, और वही गाने उन इमोशंस को बाहर लाता है। जब हम गाते हैं ना तो मन हल्का होता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है। जी हाँ, यानी गाना एक नेचुरल थेरेपी है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। इसलिए कैसी भी आवाज हो ना कि लोग क्या कहेंगे इसको तो साइड में रख दो, इग्नोर कर दो। जी हाँ, गाना सिर्फ स्टेज या कंपटीशन के लिए नहीं होता बल्कि अपने लिए होता है। बाथरूम में, किचन में, अकेले कमरे में, जहां मन करे वहीं गा सकते हैं हम। जी हाँ, जब अपने लिए गाते हैं ना बिना किसी डर के, बिना किसी कोई हेजिटेशन के, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए आवाज परफेक्ट ना भी हो फिर भी गाना गा लेना चाहिए, क्योंकि गाना दिल को जिंदा रखता है, हमें जिंदा रखता है। जी एस गिल ने कहा है हमें फैशन का गाना सुनना है, तो बस अब मैं चलती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रोग्राम आशियाना लेकर आ रही हैं आरती, तो उनके साथ भी रहेगा। तो चलिए, फैशन का है ये जलवा, और इसी के साथ ये कहूँगी अपना ध्यान रखिए और गाने की चॉइस बताते रहिए 9868107070। को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई नो मैं मैसेजेस शामिल नहीं कर पा रही, पर क्या करें, समय की पाबंदी आप भी जानते हैं, समय से होना चाहिए। और इसे आदिल कुमार गुनौर, शुक्रिया, धन्यवाद प्रियंका जी को, प्यार भर नमस्कार, थैंक यू सो मच दोस्त। और इसी के साथ मैसेज आया कि हे आई डियरेस्ट, प्रियंका मैम कैसी हैं, मैं सो रही थी, शोर सुनने में लेट हो गए। अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से लिखती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें, और ये मैंने आपका दोस्त पढ़ा है, आपका नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपुड़ जिला, आपने 5-6 बार लिख दिया है, मैंने लिखा है आपको। इसी के साथ जयराम खोरवा, सचिन खोरवा, अमन खोरवा, दीपांशु खोरवा, आपने भी बहुत कुछ लिखा है। कंचन सोनिया विहार से हमें लिखती हैं, और इसी के साथ ओके ये मैसेज आ रहे हैं, गाने बहुत खूबसूरत हैं दीदी, थैंक यू सो मच। विजेंद्र और अकोला और घटोल हमें लिखते हैं, इसी के साथ हमें वरुण लिखते हैं, अलीगढ़ से लिखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे, जी हाँ बिल्कुल सेलिब्रेट कर चुकी हैं, और क्रिश का गाना, मैंने उनकी फिल्म का गाना लगाया है बर्फी का, और आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। इसी के साथ टेक गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड यस, देश का ख्याल रखिए, देश का मान बढ़ाते रहिए, और अपना भी ख्याल रखिए।

नमस्कार भारत की, नमस्कार। दोपहर के 2 बजे है, लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित हुए रॉकेट विक्रम 1 ने अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक सफल प्रवेश कर लिया है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस टीम को फोन पर रॉकेट विक्रम 1 के सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने पर बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने के लिए बुलाया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मालडोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबरस के निधन पर शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मोजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में माओगंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तस्कना से राजधानी तालिन में मुलाकात की। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमेरिकी सेना ने हमले किए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता व्यक्त की है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की विश्व नंबर 4 चेन यूफई को हराया था। और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

और अब्बा को ही तो बताएं कि क्या करें हम, जैसे आप खुश हो जाएं और आप हमारे साथ बने रहें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ प्रोग्राम आशियाना। आशियाना हमारा घर परिवार, हमारे अपने लोग, हम जिनके लिए जीते हैं और जिनके बारे में सोचते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। और कहते हैं दोस्त कि अपने वो नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में है, अपने वो नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े दिखते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफों में भी आपके साथ रहे। वो हम सफर, वो अपनापन, वो अपने लोग और हमारा जुड़ा हुआ ताना बाना। आगे भी बढ़ेंगे और खूबसूरत गीतों के साथ। फिलहाल एक और आप सभी के लिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया से हम सफर है।

वेल, कभी आपको लगा है कि आपके पास आसपास का जो ऑरा है वो अचानक नेगेटिव हो जाता है? कोई आपसे मिलने आया, उसने आपसे कुछ बातें कहीं और उसके बाद आपको लगा कि आप टेंशन में आ गए, आप परेशान हो गए उनकी बातों को सुनकर, या आप अपना पक्ष अच्छी तरह से नहीं रख पाए? जी हाँ, होता है, हम सब के साथ होता है और बहुत बार होता है। ये वो नेगेटिव ऑरा है जो ऐसे लोगों से मिलता है जो अपनी ज़बरदस्ती कही हुई बातों को हमसे मनवाने की कोशिश करते हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी हर बात का समर्थन हम लोग करें और वो एक नेगेटिव सी वाइब्स हम लोगों को देके जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो टॉक्सिसिटी में बदल जाती हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कैसे खुद को आप सकारात्मक रख सकते हैं, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि जीवन में यदि शांति चाहते हैं, अगर आपको सच में जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर खुद को बदलना शुरू करें। क्या जरूरत है लोगों की बातें करके, लोगों की चुगलियां करके? बेहतर है अच्छे रोल मॉडल्स चुनिए, उनके बारे में बात कीजिए, एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठिए। और कैसे इन पॉजिटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहा जा सकता है, जिसके टिप्स भी हम आपको देने वाले हैं। एंड वेल, नेक्स्ट कमिंग अप अमित त्रिवेदी की वॉइस में नमो नमो।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

वेल वेल वेल, आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड भी जैसे कि हमने बात की थी कि कौन से होते हैं टॉक्सिक लोग और कैसे उनके साथ आप कोप अप कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। आप अपनी बाउंड्रीज को तय कीजिए और खुद को समझाइए और अपनी मेंटल पीस को प्लीज उनकी वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी मेंटल जो पोजीशन होती है वो बहुत खराब हो जाती है। और आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है या कोई भी, अचानक कोई भी किसी का भी नेचर अगर नेगेटिव आपको लगने लगे और लगे कि आपके लिए हर्डल बन रहा है, तो आप उसके साथ अपमानजनक बात करने के बजाय उससे बहुत प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें। अगर वो ना समझे तो इट्स बेटर टू टेक अ यू टर्न। देखिए, लिमिट इंटरैक्शंस जो होती हैं, दूरी बनाकर बात जो करनी होती है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कोशिश कीजिए कि कम से कम मिले और उनसे जितना भी दूरी बनाकर बात की जा सके और कम से कम बात की जा सके वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप अपने पॉजिटिव एरा को इफेक्ट करें उनकी वजह से। इससे बेटर है कि आप उनके साथ बाउंड्रीज बनाएं। और अगर आपकी सोच दोस्त अच्छी है, पॉजिटिव है, तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ जाए आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। एंड ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। अगर इस टॉपिक पर आप मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 9868107070। एंड माई वेरी ओन फेवरेट इश्क सूफियाना फ्रॉम द डर्टी पिक्चर।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि दिल संभल जा जरा, क्योंकि फिर से तू किसी पे भरोसा करने चला है, फिर से तू उन लोगों के साथ उठने बैठने लगा है जो तुझे टॉक्सिक वाइब्स दे रही है। एंड वेल, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम आशियाना में। एंड हमारे दोस्त रवि जोशी मेरठ से मुझे कह रहे हैं कि आरती जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी, कैसी हैं आप? कुछ रिश्ते एक किराए के आशियाने की तरह होते हैं, कितना भी सजा लो।

0: लेकिन वो अपना नहीं होता। ये अपना थॉट है। और साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आपका सच्चा साथी आप खुद हैं, आने वाले का स्वागत कीजिए और जाने वाले को शीघ्र विदा कीजिए, टेंशन नहीं लेते। That's great. इसे भी पॉजिटिविटी कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो जो जा रहा है, क्योंकि जो जा रहा है वो आपका था ही नहीं ना, तभी तो जा रहा है। अगर आपका होता तो रुक जाता ना मेरे दोस्त। तो जो आपका नहीं था उसको टाटा बाय बाय करो, और जो आ रहा है, जो आपके पास है, उसका स्वागत करो। हमें ये मैसेज मिला है, जो मेरी दोस्त बोल रही हैं, गाने की प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत है, आशारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, आरती जी आप कैसी हैं, और विजेंद्रा कैटोल अकोला से ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही ज्योति मुझे कह रही है कि प्रोग्राम अच्छा है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ, कुछ टॉक्सिसिटी या कुछ ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस अगर करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। एंड हमारा साथ बना रहेगा आप सभी के साथ एक और खूबसूरत गीत आप सबके लिए। कौन सा गेस कीजिए? लॉन्ग द लश्कर।
1: दिस इज

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

वेल देखिए, समय की सुइयां तो आगे बढ़ती जाती हैं और इस वादे के साथ आप हमेशा रहेंगे पॉजिटिव। अब मुझे तो लेनी होगी विदा और दूसरे प्रोग्राम अल्फा जेन में रहूंगी आपके साथ। कहते हैं दोस्त कि अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए वो है खुश रहना। तो बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और यूं ही अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा फैलाइए।

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: A home, a house, a mansion, a cottage, big or small. Let's count them all.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
6: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और

मुट अच्छा बन गया ना आई टॉल राइट एनी वे बिफोर मई दुकाना दूसरा नानी आगे रे आमी मैसेज आनी दिया से आमी खान का लिसनर्स जो तो रेगुलर लिसनर्स से डीटीएच एफएम रेडियो लिसनर्स ग्रुप खान भी पठाईगिना से तहाँ लगा विशेस और दुर्गेश नगनपुर राधा श्याम तहाँ भी मैसेज पठाईगिना से वंदना भावना बिंटू गोलू कुसुम भाई बाबू विश्यांश और सूरज कुमार दक्षी सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश हर्षिता और ममता भाई वर्मा तानबे गुड इवनिंग नमस्कार कोईगिना से आई एम सो हैप्पी अपने सब प्रोग्राम दे जुड़ीगिना से कोईगिना इन्हें जुड़ीगिना था कि भी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू एंड येस और जय माता दी रेडियो लिसनर्स ग्रुप खान भी जुड़ीगिना से आम खाना प्रोग्राम लगे दे तो लिसनर्स इतना टाइम नेफेलना आम दूसरा गाना आनी दिया से लाइफ टी महान सब इम्पोर्टेंट पर्सन थके होना नए फॉर पीपल हु आर इन टू रिलेशनशिप तहन करने तहना पर्सन हूम तहन मोरम करे इतु इम्पोर्टेंट हो जाए फॉर पेरेंट्स इट्स मदर फादर देन देर चिल्ड्रेन इनिया तो एवरी रिलेशनशिप तहन निजो वैल्यू करियाला मनु अलग अलग थगे ना तो लाइक वाइज इतु गाना इनिया रिसेम्बल करे इट्स वेरी इमोशनल ओवरवेलमिंग इनिया गाना एक से आशा करे हम भी इतु गाना शुनिगिना अपनी हम मोरम करे मानु की और बेसि मोरम आ जाओ कहना एश्योरेंस दी आसे तो आई भी आम खान शुनब दूसरा गीत बड़े अच्छे कोई ना से गीत और फिल्म बालिका बधू पड़ा से और यू गायना से एकदम इन एन एमेजिंग वॉइस अमित कुमार रा म्यूजिक दिखना से आर डी बर्मन और लिरिक्स बाक्षी पड़ा सो आई भी अमिकान शुनब